0: त्यसैले दान गरौं, सकेको गरौं सबैले गरौं।
1: अनुरोध शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र संरक्षण समिति, शुक्ला गण्डकी 8 तनहुँ।

0: किशन गंदे सॉन्ग यार।
1: शांत सिंह पागल है यार।
0: क्यों?
1: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
0: बट वहाँ इज आइकॉनिक।
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, कहे को पंगा लेने गए। छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत
0: फेमस हो गई। बट इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट। आई वाज इट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ, यू आर गेटिंग मी।
3: यू गाइस वांट ऑडिशन? या
1: ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: Yes. We killed it.
1: आगे ले गया ट्रोल उठाएंगे नॉट एट ऑल
0: डीनू डाल दे ट्रोल हुए तो हो जाएगी.

सरहद, मेरे जीने का तू मकसद, मेरा चैन सकूं सब दे गई, समझू मेरी अखियां विच दे।